0: কুমারটুলিঘাট মিলেনিয়াম পার্ক ও রামকৃষ্ণপুর ঘাটে দেখুন নদীর তীরে এক অপূর্ব সমারোহ।
1: দুর্গা মায়ের আশীর্বাদে আনন্দে ভরে উঠুক বিশ্ব।
2: बुखार आया है, इसे नजरअंदाज ना करें।
3: डेंगू या मलेरिया दोनों ही मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं।
2: डेंगू और मलेरिया में कंपकंपी के साथ बुखार आना, पसीना आना, सिरदर्द, तेज पेट दर्द, बदन दर्द और बहुत ज्यादा कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
3: ऐसे लक्षण दिखाई देने पर खुद से दवा ना ले, तुरंत नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाएं और डॉक्टर की सलाह लें।
2: घर के आसपास जमा पानी साफ करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मच्छरों को पनपने से रोकें।
3: जागरूक रहें, मच्छर जनित बीमारियों से बचाव करें।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।
4: आकाशवाणी कोलकाता গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান শুনছেন মিডিয়াম ওয়েভে 456.6 মিটার অর্থাৎ 657 কিলোহার্টজে। এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান শুনবেন পরমেশ্বরী রাগে সরোদ শিল্পী ত্রৈলি দত্ত। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেছেন পিন্টু দাস। পরমেশ্বরী রাগে সরোদ

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: अनुष्ठान निवेदन करलो भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण मंत्रणालय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं। दोनों नेताओं के बीच एक सार्थक वार्ता हुई। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद दो दिवसीय भारत दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। अपनी यात्रा के दौरान वे आज विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार जून 2025 के बाद से अनीता आनंद की यह भारत की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों की कड़ी निंदा की। घोषणा में सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक और निरंतर प्रयासों के जरिए रोकने, उसका मुकाबला करने और उसे समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हाविल चेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक गणराज्य रक्षा समिति के तत्वाधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हाविल चेक से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश बढ़ाने के साथ साथ संयुक्त विनिर्माण और औद्योगिक साझेदारी को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सामान्य संबंध बनाए रखने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सीमा पर शांति और सौहार्द बिगड़ता है तो इसका असर दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त युवाओं की जरूरत है। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित युवा संवाद को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि जो समाज नशीले पदार्थ की लत की चपेट में आ जाता है वहाँ पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मद्रास उच्च न्यायालय में दो न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। कानून और न्याय मंत्रालय के अनुसार ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई। धर्मलिंगम लिंगवेश्वरन और बालाथुंडयथुम कार्तिकेयन को मद्रास उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रुपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम्स में